श्री परमात्मा ने नमः। एक समय भेद करने वाले राक्षस के तटा हो वह भगवान शंकर की बहुत बहुत करने श्री भक्ति का तथा करने वह हरण का दे भगवान शंकर की स्मरण पीत कर

भगवान शंकर की देवता का प्रश करने वाले, देखो की पता नहीं करने वाले, देवता की वाम राक्षस के उन्होंने का भगवान गणपति की दोस्त करने वाले, देखो भगवान गणपति के शिव पुत्र का बनार होते करने वाले।

0: Tim Jaleel and Danco Motors.
1: Bringing back all the memories. Back to basics on Sangeet 106.1 FM. This is us.
2: मोहब्बत जिंदगी पहली की बात है अरे हम के

सुरप्राय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागासुरत्यग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गम गणपतये नमः बोलो बोलो।